0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशम्बे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी करिश्ने वालो आप रेडियो ओज़ी ताजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोर न्यूज़ और हमारे प्रोड्यूसर याहिया फरदमेर। इस घंटे की मुख्य खबर है, तेहरान में ताजिकिस्तान और ईरान के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग के विकास पर चर्चा, कुशान काल के ऐतिहासिक स्मारक सयाद में प्रत्यतिभाग अनुसंधान शुरू, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ताजिकिस्तान में 500 विदेशी छात्र अध्ययनरत, अक्टूबर में दुशंबे में तीसरा राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तोजे सोमोन आयोजित होगा और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रतिवादियों ने राज्य के अधिकृत संस्था ताजिकिस्तान सरकार के अधीन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत संरक्षण जैसे कि अनुमति के आधार पर ऐतिहासिक सयाद स्मारक क्षेत्र में प्रत्यतिभाग अनुसंधान कार्य शुरू कर दिया है। ये जानकारी राष्ट्रीय संग्रहालय के पाले हवाले से सूचना एजेंसी फोवार एजेंसी ने दी। सूत्रों के अनुसार सईद स्मारक कुशान काल से संबंधित है और ताजिकिस्तान के खातलोन प्रांत के अब्दुर्रहमान जोमे जिलों में स्थित है। इस दुर्लभ ऐतिहासिक स्थल का वैज्ञानिक अध्ययन जिस पर अब तक व्यापक शोध नहीं हुआ है, भविष्य में ताजिक राष्ट्र के इतिहास के नए अध्यायों को उजागर करने तथा उन्हें जनता और शोधकर्ताओं के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद पहली बार राष्ट्रीय संग्रहालय के विशेषज्ञों ने वर्ष 2016 में इस स्मारक का अध्ययन किया था, जहां से उनके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए थे। पंद्रह से 20 अक्टूबर तक दुशंबे में ताजिकिस्तान के स्वतंत्रता के 45वीं वर्षगांठ और ताजिक सिनेमा दिवस के अवसर पर तीसरा राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तोजे सोमोन आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य ताजिक सांस्कृतिक और कला का परिचय करना, युवा प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय सिनेमा का विकास करना तथा फिल्म क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाना है। महोत्सव में भाग लेने के लिए आवेदन 15 सितम्बर तक स्वीकार किए जाएंगे। ताजिकिस्तान के नेशनल यूनिवर्सिटी में विशेषज्ञ और स्नातक बैचलर स्तर पर 500 विदेशी छात्र अध्ययन कर रहे हैं। ये छात्र तुर्क, भारत, सऊदी अरब, चीन, रूस, ईरान, उज़्बेकिस्तान तथा अन्य देशों से आए हैं। ये जानकारी आज विश्वविद्यालय के रेक्टर इमामली नसरुद्दीन जोदा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। विश्वविद्यालय में जापानी भाषा की शिक्षा भी शुरू की गई है। इसके अलावा चीन के 3 नागरिक और संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 नागरिक ताजिक भाषा सीख रहे हैं। चौथे 14 جولای کو تهران می تاجیکستان گنجکه پریواهن او پمنتری شویستا ساین مروزودا کې نترتی می تاجیک پدین ماندالونه ایران اسلامي گنجکه سراغي ون شهر وکا سمنتری فرزانه صدیق سه ملاقات کې اسکیان تاریخ تاجیک پدین ماندال کې الگ الگ بیتاکه ایران کې سراغي ون شهر وکا سمنترلا کې پمنتری تا بندرگاه ایوان سمودری سنگتان که پراموگ محمد شکی بینسا بور ایران که پامنتری تا ایرانی ریلوی که پراموگ جبر علی زکری که ساد به ایوجید که گیه بیتا که دوران سراغور پریوان کشیتر می دی پاکش سایوکو مضبوط کرنه دونو دشون که پراغمان مرگو که مدیمسی مال پریوان که مطره برهنه تا چون بار بندرگاه می ایک لوجستیکال کندر که استابنه سی سمبندید مودو پر ویستر سی ویچار ویمش کیا گیا. پیریس نیوالوی تاستایی سمچار هماری دوسری پرسارانجاره ی هماری ریدیو که ساتره ییه.

स्वतंत्रता राज्य का प्रमाण है पूर्व अधिकारिक और सप्रभुता राज्य की व्यवस्था और राष्ट्र की महानता है जो देश के घरेलू और विदेश नीति अर्थव्यवस्था सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बढ़ावा देती है।

धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। नमस्कार। स्वतंत्रता तजिक राज्य और राष्ट्र की सर्वोच्च और सबसे मूल्यवान उपलब्ध

स्वतंत्रता राज्य का प्रमाण है पूर्व अधिकारिक और संप्रभुता राज्य की व्यवस्था और राष्ट्र की महानता है जो देश के घरेलू और विदेश नीति अर्थव्यवस्था सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बढ़ावा देती है।

तजिकिस्तान के ऊपर शांति का सूरज चमके सूरज चमके शांति आज शांति कल शांति हमेशा शांति हमेशा शांति हमेशा।

उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज़ ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहे। रेडियो आवाज़ ताजिक दिलों की आवाज़।